0: your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
1: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 530 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नु कलेक्ट करो उत्थे तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 2 VA license number 1039।
1: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भुलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
2: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, RESP ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भुलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
1: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 647-446-1616। उमरप्रीत चावला।

सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क वे मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-3333 पर कॉल कीजिए 9054560733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए
1: 205-400-400.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1135
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और उम्मीद रखती हूँ कि आप बड़ा खुशहाल होंगे, सही सलामत होंगे और जीएनई का मेला लग चुका है आप सभी के लिए। तो आप जो भी अभी तक सीएनई जाना चाहते हैं, कई लोग नए आए हैं उनके लिए भी सीएनई, उनको भी जाना है और देखना है तो आप जरूर जाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया ये है। September 7 तक चलेगा।
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया सा टीवी लेना है या फिर आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, लेटेस्ट गैजेट किचन के लिए चाहिए, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी राखी स्पेशल्स का फायदा उठाइए और ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए गोर रोड पे लंदन। और जानकारी के लिए आप उनको 900 करके आप आए और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी के सभी आपको राखी के लिए, तो आपके लिए समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सारा कुछ मिलेगा। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने खाना ऑर्डर करना है तो लाइव कुकिंग तो आपको जाना होगा। जी हाँ, तो आप जा सकते हो कहीं भी आपको बढ़िया बढ़िया आपको खाना ऑर्डर करना है तो न्यू इंडिया स्वीट रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया पे मौजूद है। तो आपको और जानकारी के लिए, बुकिंग के लिए, लाइव कुकिंग करवाने के लिए आप 905-814-1703 पर कॉल करिए। राखी की मिठाइयाँ आपको खरीदनी है न्यू इंडिया स्वीट रेस्टोरेंट पे जाइए। अब अगर आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हैं, आपने टैक्सी चलानी है या आपने ऊबर की अथॉरिटीज करवानी है या किसी तरह की भी आपने सर्टिफिकेशन करवानी है ऊबर की, तो आपके लिए योगी ऑटो सेंटर आपको ये सेवाएं देते हैं। 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में मौजूद हैं। तो आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिएगा 905-547-4464 905-547-6464। आपने गाड़ी आपने सर्टिफाइड करवानी है, खरीदनी है तो, और या फिर ऑयल चेंज करवाना है, किसी तरह से भी ऑटो मेंटेनेंस की सेवाएं आपको मिलती हैं योगी ऑटो सेंटर पे। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको बड़ा रोमांटिक सा गीत सुनाते हैं। तो ये जो गाना था बहुत ही बढ़िया रोमांटिक सा गीत है, तो आप उम्मीद रखती है कि आपको मेरी पसंद है। सो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। कलेक्शन में से है। अब ये जो समर का एंड आ जाती है, नहीं शुरू हो जाती है, तो आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है पेरेंट्स उनका तैयारी करना शुरू करते हैं, जिनके बच्चे पहली बार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ।

ये संबत तू क्यों धड़कने लगा, हाँ धड़कने लगा, हाँ धड़कने लगा, दम तक

फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो फिल्म थी राजेश खन्ना नीना चंद्रावरकर की थी, मोहम्मद रफी साहब का गा हुआ, ये बहुत ही रोमांटिक सा गीत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जो मेरी पसंद है आपकी भी पसंद हो, शायद आपको भी बस अच्छा लग रहा होगा। अब बात करते हैं, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, या फिर आपने बढ़िया सा टीवी लेना है अपनी बहन को गिफ्ट के लिए देना चाहते हो राखी का, तो आपने अगर किसी किस्म की भी आपको अपने टीवी लेना है, या फिर किचन की गैजेट लेटेस्ट आपको चाहिए, या फिर अपने आपने अपने घर में किसी किस्म की भी आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया सा फर्नीचर चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनकी राखी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए 905-799-0045, 905-799-0045। और अब आपने अगर मूव होना है तो HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। HK मूवर्स 416-524-804, 416-524-6704 पे HK मूवर्स वो आप कॉल कर सकते हैं। और आपने अगर किसी किस्म के भी किचन का काम करवाना है तो वो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है लंदन निवासियों के लिए, कि आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो अब गोर रोड पे खुल चुके हैं। आप वहां पे जाइए, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले लीजिए, और अपनी कार वैन ट्रक को कोई भी कोलिजन का काम है तो आप उनको कॉल करिएगा। अब अगर आपने बढ़िया सा ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 1715 सिसवा रोड मिसी सागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए 905-625-0055, 905-625-0055 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। आपको राखी के लिए मिठाइयाँ लेनी है तो ऑफ कोर्स समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए, आपको एकदम फ्रेश मिठाइयाँ मिलेंगी। आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

उसने चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। उसने चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की कसम कमाल हो गया, प्यार की कसम कमाल हो गया।

पास आए तुझे दिल जुड़ने क्या तो अच्छा हुस्न चला कुछ ऐसी दीवाने का पूछना प्यार की कसम कमाल हो गया प्यार की कसम कमाल हो गया।

है क्या हम तो मिट के रहेंगे, हमारा है क्या हम तो मिट के रहेंगे। जहाँ तुमने देखा जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के।

जिसने चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया, प्यार की कसम कमाल हो गया।

0: उसने चला ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल प्यार की कसम कमाल हो गया है कमाल हो गया
1: दिल का आप तक है और आंखें कर बैठे प्यार की कसम कमाल हो गया है प्यार की कसम कमाल
2: जी हाँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हो। मैंने तो खूब एंजॉय किया इस गाने को। अब अगर आपने मूव होना है तो मूविंग के लिए आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए। कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में। बहुत सारी इनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4164-1652-46704 एचके मूवर्स।
3: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
2: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अगर आपने बढ़िया फर्नीचर लेना है तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 905-795-0045-799-0045 पे कॉल कीजिए। मिठाइयाँ लेनी है तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा। आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। ये जो है ना गाना भी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है, पर है बहुत बढ़िया। 1963 में
4: पसीना याला याला दिल ले गई।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो सावन का महीना, ये झूमता मौसम होता है इसमें और बहुत ही मस्त है, तो एंजॉय कीजिएगा। कितनी शाम को देखो, कई बार इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो क्या बढ़िया मौसम होता है। बादल छाए हुए होते हैं, बारिश नहीं हो रही होती, जैसे कि आज का मौसम थोड़ी थोड़ी बारिश हुई और फिर हट गई, लेकिन बहुत ही बढ़िया मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तो बहुत मज़े का मौसम है। तो उस जब इस तरह का मौसम आप देखते हो तो आपको बस यही महसूस हो जाता है जैसे इस गाने में कहा गया है। तो अब आपको अगर आप किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-8404 416-524-6704। एच के मूवर्स को आप कॉल कर सकते हो। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत चुना है, सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम। ये जो गाना है मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत है। तो मुकेश जी जो थे वो मुकेश चंद्र चंद माथुर उनका नाम था। 22 जुलाई 1923 में 27 अगस्त 1976 उनकी डेथ हुई थी। उनकी अभी वर्षी आने वाली है तो इसीलिए मैंने उनको याद किया। मैंने सोचा थोड़ी सी मुकेश जी के बारे में, उनकी जो जिंदगी थी उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाए। 22 जुलाई 1923 टू अगस्त 27 1976 जिन्हें केवल मुकेश के नाम से जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्व गायक में से एक थे। उन्हें उनकी दर्द भरी और रसीली आवाज के लिए मैन विद द गोल्डन वॉइस भी कहा जाता था। राज कपूर की फिल्मों में उनके गाए गीत सदाबहार माने जाते हैं, जैसे कि आप अभी सुन भी रहे हो उनका ये गाना। तो उनका जो जीवन है, उनके बच्चे हैं आगे चल करके, वो मालूम ही है कि उनका परिवार है और उनके जो जिंदगी है वो बड़ी बहुत ही बढ़िया कमाल की थी। और उनको उनका जो उनके जो माता पिता थे जोरावर चंद्र माथुर और चांदरानी उनके माँ बाप थे। और मुकेश ऋषि भी उनको कहा जाता था। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, लेकिन अगले हफ्ते हम और मुकेश जी के बारे में बातचीत करेंगे, उनका उनको याद करेंगे, उनके गाने सुनेंगे गाएंगे। तो ये है कि उनका जो उन्हें ये भी कहा जाता है कि बड़े महान गायक थे। 53 ईयर ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, जो 53 साल के थे जबकि उनका करियर एकदम बहुत ऊंचाई पर था। तो लेकिन ये है कि जब तक ये दुनिया रहेगी लोग उनके गीत जो है वो हमेशा सुनते रहेंगे। तो अब मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने स्वादा भला विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो एंजॉय कीजिएगा इस बड़े खूब। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको प्रोग्राम अगर पसंद आ रहा हो तो आप 6470 पर आप मैसेज कर सकते हो। और जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को मैसेज करते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वर।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
3: Dosto sasika namaskar mazaa
4: tada hadan mansra Toronto get ready Punjabi Virsa radio and television realtor Rav Singh cellular points A to Z kitchen cabinet and realtor Harp Garewal presents the sense

0: विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 पर कॉल कीजिए 9054567733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: चुन चुन शक्ल हमारी।

0: देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए
1: 205-400

राधे श्री कुल देवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेद माता लोक माता हितैषिणी आदि सीता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंध्यं महाघोरं त्राहि मां शरणागतं त्रैलोक्य हृदय

जो भी मुंह मंगे फल पाउंदे ने दर तेरे दे मंगते बाबा शाही रंग बंडाउंदे ने सिर नीवा के मंगदे

0: एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1105
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और उम्मीद रखती हूँ कि आप बड़ा खुशहाल होंगे, सही सलामत होंगे और जीएनई का मेला लग चुका है आप सभी के लिए। तो आप जो भी अभी तक सीएनई जाना चाहते हैं, कई लोग नए आए हैं उनके लिए भी सीएनई, उनको भी जाना है और देखना है तो आप जरूर जाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया ये है। September 7 तक चलेगा।
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश, खरीदिए जीपीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूं आपकी होस्ट मीरा। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया सा टीवी लेना है या फिर आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, लेटेस्ट गैजेट किचन के लिए चाहिए, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी राखी स्पेशल्स का फायदा उठाइए और ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको किसी तरह का भी कोलेजन का काम है तो आप मास्टर कोलेजन डिपो पे जाइए गोर रोड पे लंजू। और जानकारी के लिए आप उनको 900 और जानकारी ले सकते हो। तो अब अगर आपने किसी भी आपको तो आपके लिए समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सारा कुछ मिलेगा। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने खाना ऑर्डर करना है तो लाइव कुकिंग तो आपको जाना होगा। जी हाँ, तो आप जा सकते हो कहीं भी आपको बढ़िया बढ़िया आपको खाना ऑर्डर करना है तो न्यू इंडिया स्वीट रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया पे मौजूद है। तो आपको और जानकारी के लिए बुकिंग के लिए लाइव कुकिंग करवाने के लिए आप 905-814-1703 पर कॉल करिए। राखी की मिठाइयाँ आपको खरीदनी है न्यू इंडिया स्वीट रेस्टोरेंट पे जाइए। अब अगर आप हैमिल्टन के इलाके में रहते हैं, आपने टैक्सी चलानी है या आपने ऊबर की अथॉरिटीज करवानी है या किसी तरह की भी आपने सर्टिफिकेशन करवानी है ऊबर की तो आपके लिए योगी ऑटो सेंटर आपको ये सेवाएं देते हैं और 952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन में मौजूद हैं। तो आप मिस्टर गिल को कॉल कीजिएगा 905-547-4444 905-547-6464। आपने गाड़ी आपने सर्टिफाइड करवानी है, खरीदनी है तो और या फिर ऑयल चेंज करवाना है, किसी तरह के भी ऑटो मेंटेनेंस की सेवाएं आपको मिलती है योगी ऑटो सेंटर पे। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको बड़ा रोमांटिक सा गीत सुनाते हैं। तो ये जो गाना था बहुत ही बढ़िया रोमांटिक सा गीत है तो आप उम्मीद रखती है कि आपको मेरी पसंद है। सो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग कलेक्शन में से है। अब ये जो समर का एंड जब सीएनई शुरू हो जाती है तो आपके बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है पेरेंट्स उनका तैयारी करना शुरू करते हैं, जिनके बच्चे पहली बार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ।

फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो फिल्म थी राजेश खन्ना नैना चंद्रावरकर की थी, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, ये बहुत ही रोमांटिक सा गीत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जो मेरी पसंद है आपकी भी पसंद हो, शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब बात करते हैं, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, या फिर आपने बढ़िया सा टीवी लेना है अपनी बहन को गिफ्ट के लिए देना चाहते हो राखी का, तो आपने अगर किसी किस्म की भी आपको अपने टीवी लेना है, या फिर किचन की गैजेट लेटेस्ट आपको चाहिए, या फिर अपने आपने अपने घर में किसी किस्म की भी आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, घर में बढ़िया सा फर्नीचर चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, उनकी राखी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए 905-799-0045, 905-799-0045। और अब आपने अगर मूव होना है तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। एचके मूवर्स 416-524-8004, 416-524-6704 पे एचके मूवर्स वो आप कॉल कर सकते हैं। और आपने अगर किसी किस्म के भी कनेक्शन का काम करवाना है तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है लंदन निवासियों के लिए कि आपके लिए मास्टर कनेक्शन डिपो अब गोर रोड पे खुल चुके हैं। आप वहां पे जाइए, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो आप mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले लीजिए और अपनी कार वैन ट्रक को कोई भी कोलिजन का काम है तो आप उनको कॉल करिएगा। अब अगर आपने बढ़िया सा ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर 1715 रोड मिसिसागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए 905-625-0055, 905-625-0055 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। आपको राखी के लिए मिठाइयाँ लेनी है तो ऑफ कोर्स समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए, आपको एकदम फ्रेश मिठाइयाँ मिलेगी। आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अगर उसने चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, उसने चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम कमाल हो गया, प्यार की कसम कमाल हो गया।

0: हुस्न चला कुछ ऐसी दीवाने का पूछना हाल प्यार की कसम कमाल हो गया
1: प्यार
0: की कसम कमाल हो गया
1: दिल को अब

है क्या हम तो मिट के रहेंगे, हमारा है क्या हम तो मिट के रहेंगे। जहाँ तुमने देखा जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के।

0: इतना कैसी चाल दीवाने का पूछना हाल प्यार की कसम कमाल हो गया है
1: जी हाँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हो। मैंने तो खूब एंजॉय किया इस गाने को। अब अगर आपने मूव होना है तो मूविंग के लिए आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव होने में। बहुत सारी इनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4164-1652-46704 HK मूवर्स।
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन। 9054586808।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। अगर आपने बढ़िया फर्नीचर लेना है तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 905-795-009-00045 पे कॉल कीजिए। मिठाइयाँ लेनी है तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा। आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं। ये जो है ना गाना भी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है, पर है बहुत बढ़िया। 1966 और मन्ना डे जीते गए हुए समय की तो माला सुना दी उजाला से लगी। बहुत ही भूला बिसरा गीत सावन के महीने में ऐसा ही कहा जाता है।
3: पसीना याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई।

0: चाल निराली सर पे झूमर कान में बाली हाथ में चुड़िया मोतियों वाली काला या ला दिल से गई
1: कोई रंगीला सपना के एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला।

0: सूरज दिन का उजाला, याला याला दिल भी गया, याला याला दिल भी गया।
1: तुम का मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, काजल मुँह पे पसीना, याला याला।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है खैर संसार में। ये जो सावन का महीना, ये झूमता मौसम होता है इसमें और बहुत ही मस्त है, तो एंजॉय कीजिएगा। कितनी शाम को देखो, कई बार इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो क्या बढ़िया मौसम होता है। बादल छाए हुए होते हैं, बारिश नहीं हो रही होती, जैसे कि आज का मौसम थोड़ी थोड़ी बारिश हुई और फिर हट गई, लेकिन बहुत ही बढ़िया मौसम है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, तो बहुत मजे का मौसम है। तो उस जब इस तरह का मौसम आप देखते हो तो आपको बस यही महसूस हो जाता है जैसे इस गाने में कहा गया है। तो अब आपको अगर आप किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एच के मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-804 416-524-6704। एच के मूवर्स को आप कॉल कर सकते हो। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत चुना है, सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम। ये जो गाना है मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत है। तो मुकेश जी जो थे वो मुकेश चंद्र चंद माथुर उनका नाम था। 22 जुलाई 1923 1923 में 27 अगस्त 1976 उनकी डेथ हुई थी। उनकी अभी वर्षी आने वाली है तो इसीलिए मैंने उनको याद किया। मैंने सोचा थोड़ी सी मुकेश जी के बारे में उनकी जो जिंदगी थी उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाए। 22 जुलाई 1923 टू अगस्त 27 1976 जिन्हें केवल मुकेश के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्व गायक में से एक थे। उन्हें उनकी दर्द भरी और रसीली आवाज के लिए मैन विद द गोल्डन वॉइस भी कहा जाता था। राज कपूर की फिल्मों में उनके गाए गीत सदाबहार माने जाते हैं, जैसे कि आप अभी सुन भी रहे हो उनका ये गाना। तो उनका जो जीवन है, उनके बच्चे हैं आगे चल करके, वो मालूम ही है कि उनका परिवार है और उनके जो जिंदगी है वो बड़ी बहुत ही बढ़िया कमाल की थी। और उनको उनका जो उनके जो माता पिता थे जोरावर चंद्र माथुर और चांद रानी उनके माँ बाप थे। और मुकेश ऋषि भी उनको कहा जाता था। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, लेकिन अगले हफ्ते हम और मुकेश जी के बारे में बातचीत करेंगे, उनका उनको याद करेंगे, उनके गाने सुनेंगे गाएंगे। तो ये है कि उनका जो उन्हें ये भी कहा जाता है कि बड़े महान गायक थे। 53 ईयर ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, जो 53 साल के थे जबकि उनका करियर एकदम बहुत ऊंचाई पर था। तो लेकिन ये है कि जब तक ये दुनिया रहेगी लोग उनके गीत जो है वो हमेशा सुनते रहेंगे। तो अब मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो एंजॉय कीजिएगा इस बड़े खूब को। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको प्रोग्राम अगर पसंद आ रहा हो तो आप 6470 पर आप मैसेज कर सकते हो। और जो लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम को मैसेज करते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वादा।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी भूख

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मांग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com। Helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 बार 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6474088 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। निघी जी हैं जी, जिहड़े दोस्त हुणे जुड़े ने उन्हां दा स्वागत करदे हां असीं, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल हर एतवार वाले दिन बन जांदा है। 12 तो 1 रामस पंजाबी ते 1 तो 2 सुणिया जांदा प्रोग्राम नजरिया। और इन्हां प्रोग्राम्स दे दौरान साडे नाल स्टूडियो च गल्लबात करन वास्ते टैलीफोन नंबरस हुंदे ने 4162337368 जां फिर 8297। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल, कोई भी गलबात तुसी मेरे नाल 2 बजे तो बाद करनी हुंदी है ते फिर 416-669-1379 ते कीती जा सकदी हुंदी है। 416-669-1379 मेरा परसनल टैलीफोन नंबर है। इस नंबर दे उत्ते अगर कोई टैक्सट मैसेज दे रूप च कोई सुनेहा जां वट्सएप मैसेज तुसी करना चाहुंदे हो ते इस नंबर ते भेजा जा सकदा हुंदा है 416-669-1379 ते। कितने ट्रैफिक दे विच विघन पिया देखते हो तो जरूर साढ़े नाल संपर्क तुसी स्टूडियो कर सकते हो 4162337368 या फिर 8297। और एक बार फिर तो थोड़ा अज्ज दे नज़रिया प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत। उम्मीद है कि बिल्कुल तुसी ठीक ठाक चढ़दी कला च होवोगे। और बच्चों दीआं छुट्टियां दा हुण 2 हफ्ते होर रह गए ने जी, सो लोंग वीकेंड लेबर लोंग वीकेंड आएगा, उस तो बाद बैक टू स्कूल उन्होंने चले जाना हो जाना जी बैक टू स्कूल। सो ये जिहड़े 2 हफ्ते ने वो थोड़े बच्चों के नाल बहुत बेहतरीन हफ्ते होण जी। तुसीं जरूर उन्होंने जिथे भी लैके जा रहे हो जां घरां दे विच उन्हां दे नाल इंजॉय कर रहे हो, परमात्मा बच्चों नूं तुहानूं सब नूं चढ़दी कला च रखे। और उन्हां दा जिहड़ा आउण वाला स्कूल ईयर होना वो पिछले साल नालों भी बेहतर होवे जी। साडी इह हमेशा अरदास हुंदी आ, दिली असीं कामना करदे हां ते परमात्मा उन्हां नूं चढ़दी कला दे विच रखे। ते जिहड़े भी मकसद दे नाल जो भी उन्होंने अपना टीचा मिथ्या होया, जो भी उत्ते फोकस जरूर रहन, अपना टीचा जरूर सर करन जी, वह जिस पासे भी जिस फील्ड दे विच भी वह उस तो बाद जाना चाहते ने अपनी स्कूलिंग फिनिश करन तो बाद, परमात्मा उन्हों का वो मकसद जरूर पूरा करे। जो भी वो अपनी जिंदगी दे विच बनना चाहते ने उस तो भी बेहतर परमात्मा उन्होंने बल बख्शे कि वो आप उस लैवल तक पहुँचने दे विच जरूर कामयाब होण जी हमेशा ही। और साढ़े नाल कोई भी गलबात तुसी स्टूडियो च करनी होवे ते फिर टैलीफोन नंबर एक बार फिर दस देना 4162337368 जां फिर 8297 हुंदे ने जी। ते मेरे नाल तुसी प्रोग्राम तो बाद विच गलबात करनी होवे ते फिर 416-669-1379 ते कर सकदे हो। इस नंबर ते अगर रियल स्टेट संबंधी भी कोई जानकारी लैनी होवे ते कॉल की जा सकती हुंदी है। रीमैक्स प्रेजिडेंट रियल्टी दे नाल मैं काम करदा और साढ़े कोल एक ऑफिस स्पेस अवेलेबल है जी, तकरीबन 550 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसका खाली है इस वेले। तुसी राइट वे मूव इन कर सकते हो। कोई भी अपना प्रोफेशनल ऑफिस तुसी सैटअप करना है, सैकंड फ्लोर ते ऑफिस है जी ये, और बहुत शानदार प्लेस है। और तुसी जदों देखोगे तो डेफिनेटली थानू लगेगा कि बहुत आला दर्जे की यह जगह है जिथे तुसी अपना ऑफिस जिहड़ा वो खोल सकते हो। नवा पेंट किया होया इस ऑफिस नूं और नैचुरल लाइट बहुत ज़्यादा आउंदी है ऑफिस के अंदर। पूरी दी पूरी जे मैं कहां कि विंडो साइज की जो आप गल कर लिए तो जिनी नॉर्थ वालू है वो सारी दी सारी उहदे च शीशा लग्या होया, विंडो बहुत वड्डी विंडो है। सो दोनों ऑफिस विच दोनों रूम दे विच जिहड़ी लाइट बहुत आउंदी है। सो तुसी वाइटमन डी भी मेरा ख्याल है कि बड़ी ईजी नाल जिहड़ा वो लै सकते हो बैठे बैठे अपने ऑफिस के अंदर। सो इस संबंधी कोई भी जानकारी तुसी लैनी होवे, इस नूं देखना चाहुंदे हो तो फिर मैनूं तुसी कॉल कर लेनी है जी 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। इस तों अलावा रियल स्टेट विच कोई भी ट्रांजैक्शन तुसी करनी है, चाहे वह रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, तुसी अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, वेचनी है, लीज़ पर देना चाहते हो या लीज़ पर लेना चाहते हो ਅਤੇ 416-669-1389 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕੈਸਲ ਮੋੜ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਪਲੱਸ ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। 416-669-1389 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ।